राजीव कुमार का फिल्म सूरज और चंदा का सॉन्ग अभी आपने सुना। संजीव कुमार जिसे हेमा मालिनी से प्यार था, दोस्तों संजीव कुमार हेमा मालिनी के बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे, लेकिन हेमा मालिनी संजीव कुमार को नहीं चाहते थे। तो इसी बात के कारण संजीव कुमार ने फिर कसम खा ली कि वो कभी शादी नहीं करेगा और बिन शादी शुदा आदमी का मृत्यु भी हो गया, कभी नहीं शादी किया। फिल्म जी हाँ दोस्तों, फिल्म जो सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हुई है अलका याग्निक का गीत है, जो सोनू निगम के साथ गाया है, पंछी नदिया पवन के

0: ढूंढे, हम सब मिलकर सुनेंगे।
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होठों को छू।

की बार जो सॉन्ग मैंने तैयार करके रखा है दोस्तों, सोनू निगम का गीत है। सोनू निगम एक गायक जो गसल भजन राफी साहब का गीत कितना बनाया, कई एल्बम भी तैयार किया वगैरह वगैरह। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि सोनू निगम का को पद्मश्री का पद्म मिला, जो मैं आपसे कहूँगा पद्मश्री सोनू निगम के आवाज़ में आप सुनेंगे मैं अगर कहूँ।

दोस्ती दोस्ती कमाल की होती है, दोस्ती कमाल की होती है, जिसमें वजन तो बहुत होता है, जिसमें वजन तो बहुत होता है लेकिन बोझ बिल्कुल नहीं। और वक्त तो हम जीत नहीं सकते, वक्त तो हम जीत नहीं सकते, वक्त से सिर्फ सीख सकते हैं।

0: हम।
1: वाह वाह, क्या सॉन्ग आपने सुना दोस्तों। श्रिया घोषाल के मीठी आवाज में अभी ये गीत चला। फिल्म जीत का गीत मैं तैयार करके रखा हूँ। फिल्म जीत में सोनू देओल करिश्मा के साथ काम किया। जब मैं सोनू देओल का नाम लिया दोस्तों, तो आपको मानना चाहिए कि सोनू देओल तीन लड़कियों के साथ खेल कूद कर और चला गया। पहला था अमृता सिंह, फिल्म बेताब में ये दोनों का प्यार हुआ, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। फिर भी सोनू ने पीठ घुमाकर और अमृता सिंह को छोड़कर चला गया। उसके बाद फिल्म के दुनिया में या फिल्म के मैदान पर प्यार मोहब्बत हुआ डिंपल कपाडिया से। और डिंपल तो उनका शादी हो गया था राजेश खन्ना से। फिर भी ये दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत था और आगे चलकर सोनू देओल डिंपल को भी पीठ घुमाकर और चला गया। और तीसरा फिल्म दामिनी के बात है, मीनाक्षी से शास्त्री, उससे बहुत प्यार था, दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन सोनू देओल शादीशुदा था और एक दो तीन साल के बाद मीनाक्षी को भी पीठ घुमाकर और सोनू ने चला गया। लेकिन इस फिल्म में करिश्मा के साथ काम किया है सोनू देओल। और आप जानते हैं सोनू देओल जो है वो धर्मेंद्र का बेटा है, और धर्मेंद्र तो सिर्फ हेमा मालिनी के साथ खेल कूद किया और एक दो लड़कियों के साथ। तो लोग कहते हैं कि बास के जड़ में तो सिर्फ बास ही पैदा होता है।

सोनू निगल की कहानी मैंने आप सभी बताया दोस्तों, लेकिन उसका पिता वो ही किसी से कम नहीं था, धर्मेंद्र दोस्तों, टॉप एक्टर उन दिनों का। फिल्म आया सावन झूमके में, इस फिल्म में जो निखिल शस्त्र में रिलीज हुआ, काम किया और वो भी आशा परेक के साथ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक है और पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज़ में आप सुनेंगे ओ माजी चल, ओ माजी चल।

चल दोस्तों, शाहरुख खान। अब जब मैं शाहरुख खान का नाम लिया तो आप समझ गए होंगे कि ये एक बड़ा एक्टर है और यूही चावला के साथ काम किया। शिव हरी फिल्म का नाम है, और नहीं, फिल्म का नाम है डर फिल्म का नाम है। और उदित नारायण, वो भी, उन्हें भी पद्मश्री का पद मिला है दोस्तों। पद्मश्री उदित नारायण के आवाज़ में आप गीत को सुनेंगे, जादू तेरी नज़र।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे, इशहार करे किसी और से, खुदा करे जिसे भी इशहार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हुआ तेरा वादा, दर्द भरे गीत बुरकनहार सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला दर्द भरा गीत जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, मनोज माला सिन्हा दोनों का खिला हुआ फिल्म हिमालय के गोट का सॉन्ग है, माइटी मुकेश के आवाज़ में। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार।

के साथ हमारे मुलाकात हुए, वक्त के साथ हमारे मुलाकात हुए, वक्त के साथ दिन और रात गुजारे, वक्त ने हमें साथ रखा, वक्त ने हमें साथ रखा, पर जब वक्त आए तो हम बिछड़ गए। क्या इसमें कसूर मेरा, आप या वक्त के?

क्या हुआ तेरा वादा दर्द भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम में अब की बार फिल्म तीसरी कसम का गीत है का सॉन्ग है सजनवा सजनवा बैरी हो गए हमार माइटी मुकेश की आवाज में।

0: प्यार का रिश्ता टूटे ना कभी, ये प्यार का रिश्ता टूटे ना कभी, ऐ मेरे दोस्त तुम मुझसे रूठे ना कभी। करते हैं रब से हर पल ये दुआ, करते हैं रब से हर पल ये दुआ, दूर रहकर अपने साथ ये छूटे ना कभी।
1: जितने सितारे

क्या हुआ तेरे वाला दर्द भर गीत का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। फाहर हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन है प्रोग्राम गीतों का संगम, आप सुन रहे हैं राजन के साथ।

रिया गोसाल के मीठी आवाज में जी भर के तुम देख लो, जी भर के तुम देख लो के बाद बारिशों का एक सॉन्ग है पद्मश्री उदित नारायण के आवाज में आप सुनेंगे।

0: थर।
1: अभी आप ये द्वैत सुना उदित नारायण और शरादा के साथ फावन हिंदुस्तान रेडियो के रात्रि का या शाम के प्रोग्राम है दोस्तों। और प्रोग्राम में आपकी बार मैं दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बताना चाहते हूँ कि बॉलीवुड इंडिया का जो फिल्म इंडस्ट्री है दोस्तों, वहाँ पर जो फिल्म स्टार्स लोग हैं उन लोगों को हमेशा ऊंचाई पर लोग रखते हैं। जो एक फिल्म बनते हैं तो फिल्म स्टार एक्टर जो है उन्हें ज़्यादा पैसा मिले और एक्ट्रेस के कम मिलता है। और जब मंगा कार चलाए के मोटर कार चलाए के समय होते हैं तो फिर भी एक्ट्रेस लोग मंगा मोटर कार चलाते, एक्ट्रेस लोग उससे और सस्ते कार चलाते हैं। वैसे वैसे बहुत बात है कि वहाँ पर अभी नहीं बदला है, वो एक्टर्स का दुनिया है जो फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड, वो अभी तलुक एक्टर्स फिल्म एक्टर्स एक्टर्स के दुनिया है। एक्ट्रेस के बहुत कम बातचीत बहुत कम सुनवाई वहाँ पर होता है। तो मैं पांच एक्टर के बारे में बताऊंगा जिसका सबसे महंगा मोजरकार है। नंबर 5 पर है रणवीर सिंह, जिसके पास है एक एस्टन मार्टिन कार, उसका दाम है लगभग 4 करोड़ रुपीस। नंबर 4 चौथा नंबर पर है सलमान खान। इसे तो सलमान खान को बहुत से महंगे महंगे मोटरकार है, लेकिन सबसे महंगा मोटरकार जो उसके पास है वो है एक लैंड रोवर, जिसका दाम है 4.5 करोड़ रुपए। नंबर 3 तीसरा जगह पर है अजय देवगन, उसके पास है एक रॉयस रॉयस जिसका दाम है 6.5 करोड़ रुपए। नंबर 2 पर है रिकित रोशन, जिसका पास भी एक रॉयस रॉयस है लेकिन उसका दाम है 6.3 रुपीस। नंबर 3 पर है दोस्तों बॉलीवुड का सबसे महंगा एक्टर जो है, या एक एक्टर जिसके पास सबसे ज़्यादा धन दौलत है, वो है शाहरुख खान, द रिचेस्ट मैन बॉलीवुड। और उसका पास है एक बुगाडी बेरोन जिसका दाम है 12 करोड़ 12 करोड़ रुपए दोस्तों। और 1 करोड़ होता है लगभग 28 यूरो, तो आप जोड़ लीजिए कि उसका दाम कितना होगा, लगभग 1 मिलियन यूरो में जोड़ा जाए तो लगभग 1 मिलियन होता है। यह है बॉलीवुड का छोटा सा कहानी जहां पर सिर्फ मर्दों के बातचीत होता है, औरतों को बहुत कम सुनवाई है।

दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत, अरिजीत सिंह और साथी के आवाज में भी गीत सुन रहे दोस्तों। और अब की बार अमिताभ बच्चन और राखी, आप ये दोनों का बहुत से फिल्में देखे होंगे, लेकिन किशोरदा का सॉन्ग है दोस्तों नाइटिंगेल लता मंगेशकर के साथ, और गीत का बोल क्या है आप खुद सुनिए।

ये प्यार के सपने सच हुए दोस्तों। जब प्यार दिल लगा के कीजिए तो करेंगे। अगर आप प्यार दिल लगा के तो ये सपने जरूर सच होंगे। अगर दिल लगा के नहीं करेंगे तो सपने सच नहीं होंगे। बहुत से लोग प्यार दिल लगा के करते हैं लेकिन प्यार करते करते फिर मन भर जाता है और ये सच झूठ में बदल जाता है और ये घाव जो दिल पर छा जाता है वो जिंदगी भर रहता है दोस्तों। ये प्यार का बोझ जो है, प्यार का दुख जो है, जो दिल पर चल जाता है, आप जानते हैं आँख से शुरू होता है फिर जाकर दिल में समा जाता है। लेकिन जब ये दिल टूट जाता है तो फिर मैं ही एक बात कहूँगा, प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम हो जाता है और उसको संभालना, उसको प्रॉब्लम को हल्का करना कोई नहीं होता है। हमेशा एक घाव के तरह छा जाता है। एक आखिरी सॉन्ग मैं पेश करूँगा इस सिलेक्शन में और वो है जरा तस्वीर।

एक भक्त की माँ से प्रार्थना। जगदम्बे पहाड़ा वाली माँ, सोनू निगम जी की आवाज़ में यहाँ से हमने और सुनी है। ये सुंदर सा माता भजन आपके लिए पेश किया गया है। माता रानी के आशीर्वाद, माता रानी के आशीर्वाद हमेशा हम सबके साथ बने रहे। माता रानी के आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बने रहे। हमको था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई है। होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई है।

सजा हर सजा है दरबार माँ ज्योति जगदम्बा की, सजा है दरबार माता जोगी जगदम्बा की। नवरात्रि का त्यौहार है, नवरात्रि का त्यौहार है, वो देखो मंदिर में मेरी माता मुस्कुराई है। जय माता दुर्गे की।

माता ने पानी में ज्योति जलाई है, आपे ज्वाला माई रे। दुर्गा इज अ तामस फॉर्म फ्रॉम पार्वती ऑफ आदिशक्ति, हर नाम बतेकंत ऑन ओवर विनलक से दी मुइलक बना दरबार इस ऑन तुखंकलक पार्वती वर्त ओक अम्बा मुदर खनुम्त ऑफ अन्नापूर्णा। वी वास दुर्गा माता, दुर्गा माता वर्त खसीन अस अन मुदर फिगूर एन फक अफगबिल्ड अस अन मोये फ्रौ रेडन ओप अन लेव ऑफ टाइगर मेट फेले आर्मन दी एलक अन वापन द्रागन एन फक डेमोनन फर्स्लान। एन वत वर्तेगेंवोर्दिग मा दुर्गा, द गोदिन दुर्गा वर्त गेसीन अस अन टेकन फन मख्त en bescherming, en daarom heeft ze door de jaren heel zoveel volgers gekregen. Zij was oorspronkelijk geïncarneerd om tegen een demon te vechten, tegen de demonen te vechten die alleen een vrouw kon verslaan, die alleen één vrouw kon verslaan. Nu wordt ze gezien als een woeste krijgersgodin. Het woord Durga betekent letterlijk ondoordringbaar, onoverwinnelijk, onaantastbaar.

फिर से हौला हौले से मुस्कुराते हैं, धीरे से मुस्कुराते हैं, माता शेरवाली की भक्ति में मन को लगाते हैं। बड़ा बरकत है माता रानी की भक्ति में, जब से की है कोई दुख दर्द ही नहीं होता है। सुनो, ये बादल जब भी बरसता है, ये बादल जब भी बरसता है, मन माता रानी को दर्शन को तरसता है।

वाली जगदम्बे लखवीर लखवीर सिंह लखा जी की आवाज में यहां से हमने सुने। इस दुर्गा माँ द मुदर फान शिवा दुर्गा स्तात बकेंत ऑस द क्रैगर होदिन स्तात बकेंत ऑस क्रैगर होदिन हर belangrijkste rol in de hindoeïstische mythologie is het beschermen van de mensheid tegen het kwaad. En bovendien is zij, Durga Mata, de belangrijkste gemalin van Shiva. Parvati heeft talloze namen. Ja. पार्वती जी के ऐसे अन्य नाम हैं 108 नाम ऐसे हैं। होदिन दुर्गा इस अन इनकर्नासी फन होदिन पार्वती स नाम द अवतार फन देवी दुर्गा ओम महिषासुर त फर्नितखन De negen vormen van Ma Durga wordt aanbeden met negen verschillende prasad of bhog. De drie eenheid van Brahma, Vishnu en Shiva kwam samen om een krachtige vrouwelijke vorm met 10 armen te creëren. Hoe is Durga Ma ontstaan? En die is wat ik net zei, de drie eenheid van Brahma, Vishnu en Shivji kwamen samen om een krachtige vrouwelijke vorm met 10 armen te creëren. Toen Durga als geest uit de wateren van de heilige Ganga's tevoorschijn kwam, kreeg ze van alle goden samen een fysiek vorm. आगे जानने के लिए सुनने वालों आप जरूर से दुर्गा सप्तशती पढ़ें या मंदिरों में जाएं और उनका कथन भी सुनें। मन उदास हो तो एक काम किया करो मन उदास हो तो एक काम किया करो जय माता दी नाम ले लिया करो।

जन्म से अब तक माता रानी और मेरी माँ बाप के आशीर्वाद ही है जो आज भी मेरे साथ है। नींद आए तो सो जाया करो, ना आए तो माता रानी की भक्ति में खो जाया करो। रिद्धि दे सिद्धि दे, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा के संपूर्ण कर,

सज्जन जो हित दे, सज्जन जो हित दे, कुटुंब में प्रीत दे, जग में जीत दे, माया दे साया दे, और माया दे साया दे, और निरोगी काया दे, मन मान सम्मान दे दे, सुख समृद्धि और ज्ञान दे, शक्ति दे भक्ति दे, शांति दे भरपूर दे।

0: हर साल नवरात्रे माथे के लकविंदर सिंह लखा जी के जी ने सुना दी और नौ दिन के इसमें कथा भी सुना दी है कि कौन कौन दिन कौन माता का दिन है। चरणों में धन, घरों में धन की बरसात हो और चरणों में माँ की ध्यान हो, घरों में धन की बरसात हो, माता रानी की आशीर्वाद हो। जय माता दी। हे माता रानी, वो एक आपका नाम है जो बनाता मेरा बिगड़ा काम है। सुबह सुबह ले माता रानी का नाम, सुबह सुबह ले माता रानी का नाम, सिद्ध होगा तुम्हारा सब काम। कभी सुबह तो कभी शाम याद आती है, कभी सुबह तो कभी शाम याद आती है, माता रानी तेरा दर्शन की याद आती है।
1: जय माता दी।

ने सुंदर से फरमा दी है शेखर जशवाल कि मेरे घर आओ मैया नवरात्रों में, ना सिर्फ नवरात्रों में पर हमेशा माता हमारे साथ ही रहे। आज माता रानी की बात होने दो, आज माता रानी की बात होने दो, मुझे माता रानी की भक्ति में खो जाने दो। यहाँ वहाँ की बात छोड़ो, यहाँ वहाँ की बात छोड़ो, माता रानी के भक्ति से नाता जोड़ो। यहाँ वहाँ की बात छोड़ो, माता रानी की भक्ति से नाता जोड़ो। मिल गई जिंदगी हसीन, मिल गई जिंदगी हसीन, जब मैं हुए माता रानी की भक्ति में लीन।

तुम्हारे घर आओ माँ शेरावाल एक बार फिर हमको सुना दी शेखर जशवाल जी की आवाज़ में। जहाँ प्रेम वहाँ भक्ति है, जहाँ प्रेम वहाँ भक्ति, जहाँ शिवा जहाँ शिव वहाँ आदि शक्ति है। पार्वती जी संग शिव को पूजिए, त्याग कपट अभिमान। खुशियाँ सभी जगत की मिलती, छूटे माया जाल, पार्वती पते हर हर महादेव।

नाच रहे डमरू के ताल पर शिव शंभु त्रिशूलधारी गंगाधर गंगाधर बाबा महाकाल सर्वेशु। वो मौत देखकर भी हंसते हैं, वो मौत देखकर भी हंसते हैं जिनके मन में महादेव बसते हैं। भक्ति को उस मुकाम पर पहुंचा दो, माँ की भक्ति को उस मुकाम पर पहुंचा दो आखिरी सांस तक। हे माता रानी, माँ तेरा ही नाम लूँ, स्वर्ग स्वर्ग में देवता भी उनको अभिनंदन करते हैं जो हर पल माता रानी का वंदन करते हैं। काल का भी उस पर क्या अखाट हो जिस बंदे पर महाकाली का हाथ हो। एक पल, एक दिन, एक साल, एक जन्म, माता रानी तेरी भक्ति में मगन रहे हम।

मित्रों, हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मित्रों मन की शांति भंग हो जाती है। आप रिश्ता नहीं रह पाते हो, हमेशा टेंशन में आप रहते हो। भाई बहनों, हमेशा टेंशन में तो व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जब आप अशांत रहते हो तो घर में परिवार के साथ चाहे जहां भी हो आप हमेशा टेंशन में रहते हो और बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हो या गुस्सा कर लेते हो। मित्रों, तो ये ठीक बात नहीं है। अपने आप को संभालो और आगे बढ़ते रहो।

दोस्तों, तन की सुंदरता ध्यान करना, तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है और जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। मित्रों, इसीलिए मनुष्य का स्वभाव यानी मनुष्य का आदत स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए।

मित्रों, कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे, जितना दूर रहेंगे मित्रों, उतना ही खुश रहेंगे आप, खुश रहेंगे जिंदगी में। मित्रों, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। आप खुद जानते हो मित्रों, आप इसमें गलत फहमी ना लावें कि हम नहीं जानते, हम ना जानत रहेली। खबरदार, सब चीज तो जाने हैं, फिर भी टाल मटोल कर रहे हैं। अपने कर्म को सुधारो मित्रों, कर्म को सुधारो, यही सबसे बड़ी बात है मित्रों, कर्म को सुधारना चाहिए।

मित्रों, भगवान कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। मित्रों, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मित्रों, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है, संत के समान है। मित्रों, ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है, मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।

साथियों, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, जिसमें भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रवेश होने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता। मित्रों, इसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी या भक्त की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। मित्रों, अचल होती है, डगमग नहीं होवत है। जैसे आप अपने जीवन में ऐसे नहीं है, आपके जीवन में तो बहुत अच्छी बात है, अपनी भक्ति करते रहना। मित्रों, भक्ति करते रहना।

प्रेमी भाई बहनों, बड़े से बड़े संसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में यानी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। मित्रों, स्थित रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, वाह वाह क्या बात है रे, क्या बात है। मित्रों, तो आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे लोग रिश्ता बनाने के लिए, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे मित्रों, तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। तो ऐसे चापलूसी लोगों से बहुत संभल के रहना चाहिए, बहुत चौकस रहना चाहिए। मित्रों, मित्रों, एक भगत सांवरिया के पास बैठकर क्या सुनाता है, सुनिए।

मित्रों, कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते ना, या करते हैं? पता नहीं, आप खुद जानो। मगर हम यही आशा रखते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं। तो गधे को घोड़ा आप नहीं बनाते हैं ना? वास्तविकता में अभी वही युग चल रहा है मित्रों, जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप भी ऐसे हैं, खबरदार। मगर मुझे पता है आप ऐसे नहीं हैं, जानता हूं मैं। भगवान कहते हैं मित्रों, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना। विशेष करके लड़की लड़कियों जवान है ना, मीठी मीठी बातों में फंसा लेंगे, जीवन खराब कर देंगे। खबरदार, पास हो गए तो मीठी मीठी बातों में कभी मत फंसना मित्रों, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं मित्रों, बहुत करीब होते हैं। वही लोग आपको ज्यादा चोट पहुंचाएंगे, बहुत ज्यादा। मित्रों, मैं आपको इस भजन के माध्यम से कुछ बतलाना चाहता हूं। जो लोग मंदिर जाते हैं, मतलब सभी नहीं, कुछ लोग जो मंदिर जाते हैं, तीर्थ करते हैं और कहां कहां ये पूजा स्थल पर जाते भी हैं, तो उन लोगों से हम ये कहना चाहता हूं कि इस भजन को सुनिए। अगर आप इसी श्रेणी में पढ़ते हैं, लागू हैं, तो जरूर सुधर जाइए। और अगर आप इस लाइन में नहीं हैं, तो आगे चलते रहो, चलते रहो।

राम नाम राम नाम राम नाम, राम राम कहिए, ना कोई खर्चा लगता है ना कोई रुपया लगता है, बस राम ही नाम कहते गुनगुनाते चल।

जय जय राम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। सुंदर हनुमान चालीसा आपके लिए प्रस्तुत किया गया है और कहते हैं कि परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। सभी को सुप्रभात। सुप्रभात जिंदगी का हर पल, जिंदगी का

रिश्ते वही श्रेष्ठ है मेरे दोस्त, रिश्ते वही श्रेष्ठ है जिसमें शब्द कम और विश्वास ज्यादा हो। जी हाँ, आपने सुने हैं कि रिश्ते वही श्रेष्ठ है जिसमें शब्द कम और विश्वास, जी विश्वास ज्यादा हो, अहंकार कम और प्रेम ज्यादा हो। मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर है। बात भी सही है मेरे प्यारे प्रिय प्यारे भक्त प्राणियों कि मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर है। और ये भी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। सुनो एक बार फिर कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, पर बात ऐसा नहीं है, बात ऐसा नहीं है। लोग भाग्य लेकर आते हैं, आप और मैं, हम सब भाग्य लेकर आते हैं और कर्म लेकर और जाते हैं। हम भाग्य लेकर आते हैं और कर्म जो हम करते हैं वो कर्म हम लेकर जाते हैं।

वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुंदर सा गणेश भजन यहाँ से श्रवण की है, पावरफुल पावरफुल भजन आपके लिए, ताकि आपका दिन वो अच्छे से और प्रेम से मुस्कान से शुरुआत होवे। ये बात मैं आपसे बताना चाहती थी कि सुबह का हर एक पल, सुबह का हर एक पल का आशीर्वाद, हर एक पल हाँ भगवान का आशीर्वाद होता है। सुबह का हर एक पल भगवान का आशीर्वाद होता है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हाँ भगवान का आशीर्वाद होता है। इसे हंसते हुए जिए, हाँ इसे हंसते हुए जिए और अपने दिन को शानदार बनाओ। क्योंकि मेरे दोस्तों दिल थोड़ा से छू जाता है ये बात कहने के लिए कि ऐसे कितने हमारे जीवित प्राणी हैं जो सुबह को फरवेल कॉम नहीं कर पाते हैं। आप ये सुबह देखे हैं, आप बहुत खुशकिस्मत वाले हैं, या न्यू हुई मोर्ख सुप्रभात गुड मॉर्निंग, बस हंसते हुए चेहरे पे बड़ी सी स्माइल से इसे स्वागत करो। और कहते हैं कि ईश्वर देता है उसी को जो बांटना जानता है। हाँ ईश्वर देता है उसी को जो बांटना जानता है, फिर चाहे वो धन हो या खुशी।

हर हर हर हर हर हर महादेव। हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, सबके प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपकी, हे मेरे ईश्वर, कि आपकी कृपा, आपके कृपा से एक नई सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। हम सब कितने खुश नसीब हैं कि आपका आभार मेरे सभी सुनने वालों के सभी मित्र, सभी संबंधी खुशी रहे, स्वस्थ रहे, हम सब स्वस्थ रहे, हम सब खुशी रहे और उनकी दीर्घ आयु होवे। हम सब की दीर्घ आयु रहे, स्वस्थ रहे, संबंधी सभी जो है खुश रहे। ईश्वर आपकी, हाँ ईश्वर आपकी, हम सब की हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और सभी सुखी, सभी दुख जो है वो दूर होवे। यही प्रार्थना है ईश्वर से, यही प्रार्थना है भगवान से कि हम सबको सुख शांति प्राप्त कराएं।

अति सुंदर अति सुंदर दिल को छू जाते हैं, तार तार जो है वो सब हिला देते हैं। इतनी सुंदर यहाँ से आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है ये सुंदर सुंदर सा भजन, मिटाने से मिटे नहीं ये भाग्य के लेख, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य का रेखा, कर्म अच्छा तू करना कर्म अच्छा तू करता चल, हाँ कर्म अच्छा तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख, तो फिर ईश्वर की महिमा देख, दर्द ना होता।

खूबसूरत सवेरा आपको हम सबको बधाई है। नई सुबह, नई किरण, नई आशा लेकर आई है, नई उम्मीदें, नई रास्ता। ये जहां एक दिन नहीं, ये मजह, ये पल एक दिन नहीं, आपके सपनों को साकार, हाँ आपके सपनों का साकार करने एक और मौका मिला है मेरे दोस्त। आपका पल सुखद, सुखद में सुंदर एवं खुशियों से भरा रहे। हम सबके पल जो है वो खुशी, सुंदर एवं

ये दिन, ये पल, ये सुबह बहुत सारे बधाइयाँ हो। शुभ प्रभात आप सभी को। उदय उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है। हाँ, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है मेरे दोस्त। हाँ, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है। ऐसे ही मेहनत करने से भी हम धीरे धीरे भी आगे बढ़ते हैं। और हाँ, धीरे धीरे सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, हाँ, धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार का प्रकाशित कर सकता है, जैसे कि आप। जी हाँ, आप में धैर्य है, आप में धैर्य है, आप में तपस्या है। यू हैव अ विल ओम दूर तखान ओम दूर तबरेकन द पेंट यू हेलमाल ऑफ द यूस्ट ऑफ वेग एंड दार बे हैव यू ओक द kracht van uw lieve Heer bij. En dan kunt u zelf zien hoe gelukkig u op den duur kunt zijn. En het enigste is doorzetten, gewoon doorgaan. In alle positieve dingen.

सुप्रभात मेरे दोस्तों, सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे भक्त प्राणियों। जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, इसे अपनाओ। हाँ, इसे अपनाओ और अपनी खुशियों को बिखेर दो। हाँ।

Wij zijn allemaal gezegend. Ja, en dan wensen wij u ook vanuit Fahon Hindustani Radio een gezegend dag. Nieuw begin. Nieuwe kansen. Nieuwe lach. हंसता वही है मेरे दोस्त, हाँ हंसता वही है जैसे आप हंसते हैं, जो दुनिया से नहीं बल्कि अपने आप से हार जाता है। आपका आज, आज आपका आज हमेशा खुशहाल और सुखदमय रहे। हाँ आपका आज, ऐसे ना सोचो कि आज आज नहीं, अभी कुछ पल के बाद भी आप कहोगे कि आज का दिन, एक घंटा के बाद आप भी कहोगे आज का दिन, रात में होगा तो भी कहेंगे आज के दिन, आज की रात, क्योंकि ये आज कभी जाता नहीं, कल कभी आता नहीं, हाँ कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं।

लता जी के आवाज़ में और साथ दे रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी। ये सुंदर सा गीत ज़रा सामने आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है। कन कन में है भगवान, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।

फिल्म का नाम कन कन में भगवान और टाइटल सॉन्ग आपको सुना दिए महेंद्र कपूर जी ने कि कन कन में भगवान।

उसी फिल्म से ये भी हम आपके लिए भी प्रस्तुत कर रहे हैं। जरूर से आप सुने और सुने इसका शब्द जो है इसे समझे।

कितने चुन चुन कर ये शब्द जोड़ जोड़ के इसका गीत बनाया गया है। और सच में मेरे सुनने वालों, अगर आप गौर से इस गीत को सुने जो हमने आपके लिए प्रस्तुत की है, तो आप भी सोच में ही रह जाओगे, सोचते ही रह जाओगे कि कितना कितना कितना चमत्कारी से ये संसार रचा गया है, कैसे आप और हम भी रचे गए हैं, बनाए गए हैं। इस पे आप सोचोगे, समझोगे, बुनोगे तो आप अपने आप को बहुत ही बहुत महान समझोगे। Üben unik ve sen allemal unik. Nicht allein der Mensch, aber alles und alles, alles ist so unik. बनाने वाले का हम क्या तारीफ करें जिसे हम देखे नहीं, सिर्फ महसूस करते हैं। और सोचो तो फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन हैं। सुंदर सा गणेश मंत्र, गणेशाय नमः। आप सभी को नवरात्र के हार्दिक से शुभकामनाएं पेश किया जाता है।

और सर से वो सर की, तो कभी धीरे धीरे के सांस में हम चलते गोविंदा और नीलम की ओर, और वो है खुद गर्ज। मूवी के नाम है खुद गर्ज, सुपर हिट सॉन्ग मैं से मीना से नशा की डिल कैनडी से बैल है।

और आप किया जाने से और क्या क्या हो जाते हैं हमारे यारो यारो, प्यार की कागज पे लिख दूँ तेरा नाम।

दोस्तों मुकेश माइटी मुकेश करोड़ों का दिल चुराने वाला हार्ट ऑफ मिलियंस और वह माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में हसरत जयपुरी शैलेंद्र

लगी जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर, ओ हे करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

और दोस्तों तू मेरी आसमां परे और नए गीत कुछ पुराने गीत से आप लोग को हम सुनाएंगे करेंगे। मत कर इतना गुरूर, कभी कभी लोग को गुरूर बहुत हो जाते हैं। तो पंकज उदास अलका याग्निक क्या बताता है, मूवी के नाम है आदमी खेलो ना भैया खेलो ना।

और दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं, कितना चाहते छुपाएंगे हम और कितना चाह छुपाएंगे तुम, और ये गीत है

नाच पाएंगे बैठे आमिर खान या नाचो। दोस्तों जोंग ही जोंग आपको हम सुनाते हैं आंची और आप वहां हम यहां कि कभी राधा क्या बोलते हैं आओ सुना जाए।

0: अच्छा चलता हूँ।
1: और बोल ना राधा बोल, आज कुछ बोल किशन और राधा के सॉन्ग में आज हम मतवाला है दोस्त। और राधा और कृष्ण का जोड़ी आज तक दुनिया पे और उससे जबर जोड़ी कहीं नहीं दोस्तों।

गोविंदा तेरे किशन कन्हैया मूवी का नाम है मेरा लहू। और दोस्तों आज कुछ किशन की मूवी में हम हैं तो एक और हो जाए, एक जान है हम आसमां के आसमां पे लिखेंगे दो।

और दिल चाहे तो आसमां पे जमीन पे दिल परे और जहां भी चाहो लिख दूंगा तुम्हारा नाम और तू तू तू तू तू तरा थोड़ा ना दिल हमारा।

En dat was een shuka shuka shuka chitri zong. और दोस्तों और आगे को हम चलते हैं बढ़ाते हैं अपना जोंग को एंड ओनली द हॉट वन बाय रेडियो फॉर हॉन.

0: और क्या हुआ तेरा वादा नहीं खुद सी वत काली की रही मेक सॉन्ग जो प्रबद पंचू ने गाकर आपको सुना दिया है। और अगला गीत है बॉलीवुड पार्टी सॉन्ग।
1: हाय हाय हाय हाय

और आगे भी यही शोर, पीछे भी, पीछे पीछे यही शोर होता है, और इस पूरा दुनिया में शोर है, द बेस्ट रेडियो स्टेशन ऑन द वर्ल्ड एंड दैट इज रेडियो वाहन और द

Marihuana, hoe pagel, nog steeds de lovely song, mensen. तो हम जानते हैं कहां जाते हैं कहां जाते हैं, किसी के चुनरिया उड़ जाते हैं, तो चुनरिया पे भी गीत बन चुका है यारों।

और सर से वो सर की, तो कभी धीरे धीरे के सांस पे हम चलते गोविंदा और नीलम की ओर, और वो है खुदगर्ज। मूवी के नाम है खुदगर्ज, पर हिट सॉन्ग मैं से मीना से नशा की डिल कैनेडी से बैल है।

और आप किया जाने से और क्या क्या हो जाते हैं हमारे यारो यारो, प्यार की कागज पे लिख दूं तेरा नाम।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। एनाथोलिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स बदंत एंड ससो लोबी लोबी अंत ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।

0: आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अब मार पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतनी बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यार, आप आजमा कर तो देख। Sebi Jankari bel tijdens kantooruren van maandag tot vrijdag van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Kantoor, katelefoonnummer 070-365-2247. Uit Studio Qatar kan nummer 070-362-2077. De job hier in Kakamho, denk aan Fahun Hindustani Radio. U bent van harte welkom. इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यारो, ढंढोरा भी पीटते रहना, रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू इसके लिए। और इसके लिए ना तिलक हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो वक्त हो चुका है यार कि आप भी हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए, तो आपके लिए हम लोग आपका मनपसंद नगमाएं चलाएंगे। हाँ, सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने उसी तक फिर तक, तो आप भी हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। एकदम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ हमारे प्रिय श्रोताओं, गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नाम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। और बीते दिने बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म आरजू तक, जो रिलीज किया गया था 1965। कुछ नगमे सुना चुका था मैं आप सभी को, कुछ सुनाने को रह गया है। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलकाए हुस्न श्री साधना जी के साथ, और महान अभिनेता रेग्रेट एक्टर फिरोज खान भी इस फिल्म में काम किया है। संगीतकार है शंकर जय किशन। तो एक जबरदस्त सॉन्ग आप सुनेंगे, सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी, पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में। अजी हमसे बचकर कहां जाएगा,
1: अजी हमसे बचकर।

Is een Rwaan uit de film Aarzoo 1965, Aji Hamse Bachkar Kahan Jayega. महान फनकार सुरों का बादशाह रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में शंकर जय किशन की साज. एक आखिरी बयान आप सुनेंगे एक फिल्म आरजू. जब इश्क कहीं हो जाता है अति सुंदर कव्वाली है और गाने वाले हैं मुबारक बेगम और क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी. शंकर जय किशन के साज हसरत जयपुरी की अल्फाजी 1965 आरजू.

0: मुझे क्या मजाक है, क्यों सता रही हो?
1: हम सता रहे हैं तुम्हें, खुद ही तो इश्क फरमा रही हो।
0: इश्क? किस इश्क?
1: अरे मैं सब जानती हूँ, जिन रमेश को तुमने फंसाया है ना, वो तो मेरे भैया है। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। हाँ
0: रमेश, ओ सरला प्लीज, ये सब झूठ है, झूठ है।
2: ब्यूटीफुल सॉन्ग है कुछ डायलॉग के साथ आई द फिल्म आरजू 1965 हसरत जयपुर का लिखा हुआ अति सुंदर बयान कंपोज बाय महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने क्या संगीत दिया इस फिल्म में। अभी तो आप सुने क्लासिकल और वेस्टर्न म्यूजिक कैसे मिलाया था ये दोनों संगीत का, इसका ये तो बहुत ही बड़ा खूबी था ये दो महान संगीतकारों का। आशा भोसले और मुबारक बेगम साथियों के साथ सुनाया आप सभी को। तो हमारे प्रिय साथियों सभी नगमे फ्रॉम द मूवी आरजू 1965 मैंने आप सभी को सुना चुका। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो रिलीज किया गया था इन 1966 और इतना काम कमाया इस फिल्म में वर्ल्ड वाइड फिल्म सूरज। सभी नगमे इस फिल्म का सुपरहिट साबित हुए। तो फिल्म सूरज में से जो नगमे मैंने सेलेक्ट किया हूँ अब अभी आप सुनेंगे। और फिल्म सूरज में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलकाय हुसन द ग्रेट क्लासिकल डांसरेस वी जयंती माला जी के साथ। मलकाय हुसन ब्यूटी क्वीन मुमताज जी इस फिल्म में भी काम किए है। एक बार फिर शंकर जय किशन के साज और हसरत जयपुरी के अल्फाजे। उस जमाने में भी लोग जानते थे ना कि नेवर चेंज द विनिंग टीम। और ढेर सारे फिल्मों में शंकर जय किशन ने अपना संगीत दिया है राजेंद्र कुमार जी के फिल्मों में। और खास करके लोगों का भी कहना है और ये भी साबित हुआ है कि सबसे सुंदर सुंदर और दिल को छू लेने वाला नगमे पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी जी जो गाए हैं वो सिर्फ राजेंद्र कुमार जी के फिल्मों में। लोगों का कहना है, खास करके हम लोगों का मिस्टर गूगल भैया यूसुफ जी का भी यही कहना है। तो अब फिल्म सूरज में से आप नगमे सुनेंगे 1966 एक जबरदस्त सॉन्ग आप सुनने वाले हैं। जरा दिल थाम के बैठिए, क्या हलचल मचा दिया था ये नगमा जब रिलीज किया गया 1966 में वर्ल्ड वाइड। बहारों फूल बरसाओ, मेरे ख्याल से जितना बैंड था उस जमाने में भारत से लेकर वर्ल्ड में सभी ये गाने अपने रेपर्टुआर में लिख लेते थे। और शादियों में खास करके पहला गाना लोग पसंद करते थे इसे सुनने के लिए। तो मिलके सुनते हैं लेजेंडरी सॉन्ग बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। क्या बात है, मिलकर सुनते हैं रवि साहब जी ऑप्शन बेस्ट।

जबरदस्त लेजेंडरी सॉन्ग आप श्रोताओं के सामने मैंने पेश किया आई द फिल्म सूरज 1966 सुरों का बादशाह रफी साहब जी के आवाज में शंकर जय किशन के साथ और अल्फाजी था हसरत जयपुरी जी का। पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप टून है गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और नगमे चल रहे हैं फिल्म सूरज का। इतना है तुमसे प्यार मुझे सभी नगमे क्या बात है सुपरहिट फ्रॉम द मूवी सूरज 1966 का सुपरहिट मूवी मिलके सुनते हैं रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में।

daar uit de film Soeretje 1966. Mahane Amazuke Malkin Aura Malik Ravisab Aura Lata Jikae Beautiful Duet Ape Sne Mere Khayal Se Dekha Jai सुमन कल्याणपुर होना चाहिए। तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, कुछ शेर्स हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज क्या है कुछ शेर्स दोस्तों के बारे में यारो, कि शिकवा मत करना, शिकवा मत करना, फिर के हमने एक आखिरी बार भी पूछा नहीं। आज पूछती है, आज फिर पूछती है, क्या तुम्हें आज भी हमसे प्यार है? आवाज का इंतजार करता हूं। खुदा ने लिखा ही नहीं तुझको मेरी किस्मत में शायद, खुदा ने लिखा ही नहीं तुझको मेरी किस्मत में शायद, वरना खोया तो बहुत कुछ, वरना खोया तो बहुत कुछ था तुझे पाने के लिए। मैंने उससे कहा कि छोड़ दो या तोड़ दो मुझे, मैंने उससे कहा कि छोड़ दो या तोड़ दो मुझे, उसने हंस के गले से लगाया और कहा छोड़ रहे हैं आज तुझे, टूट तुम खुद ही जाओगे। एक महबूब लापरवाह, एक मोहब्बत बेपनाह, एक महबूब लापरवाह, एक मोहब्बत बेपनाह, दोनों काफी है सुकून बर्बाद करने को। तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे यारो, अपना तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे। तुम प्यार कर लो, तुम प्यार कर लो, हम उस पे अपने आंखों से हुकूमत कराएंगे। ये भी होता है यारो, अपना हम अपना स्टेटस दिलों पर अपडेट करते हैं फेसबुक पर नहीं यारो, हम अपना स्टेटस दिलों पर अपडेट करते हैं फेसबुक पर नहीं, क्योंकि हमारे एटीट्यूड को समझने के लिए एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन चाहिए। यारो ये था कुछ शेर हमारे शेर की चाहने वालों के लिए। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। एक आवाज जो आप सुना उस जमाने में, और ये आवाज आते हुए हलचल मचा दी थी हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में। द ग्रेट शारदा जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे तितली उड़ी जो चली क्या बात है। शैलेंद्र का लिखा हुआ अति सुंदर बयान कंपोज बाय शंकर जयकिशन फ्रॉम द मूवी सूरज 1966।

ब्यूटीफुल सॉन्ग टिटली उड़ी उड़ी जो चली उस जमाने के नया आवाज 1976 तक में रिलीज किया गया था। ये नया आवाज शारदा जी का इन द फिल्म सूरज 1976 और वर्ल्ड वाइड हलचल मचा दी थी। शंकर जय किशन की साज शैलेंद्र की अल्फाजी। अगला बयान जरा दिल थाम लीजिए, एक जबरदस्त लेजेंडरी सॉन्ग है, एवरग्रीन सॉन्ग फ्रॉम द मूवी सूरज। क्या बात है, मिल के सुनते हैं चेहरे पे गेरी जुल्फे रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में।

Bayan uit de film Suraj 1966. Surokabacha, the King of Melody, Padma Shri Mahmud Rafi Sahabji ke beautiful awaaz mein, composed by Mahan Sangeetkar Jori, the great Shankar Jai Kishan. एक अच्छी सुंदर क्लासिकल सॉन्ग आप सुनेंगे और जरूर इस फिल्म को कभी आप देखना. फिल्म सूरज, क्या नाचती थी वो महान हीरोइन विजयंती माला जी. इन दिस फिल्म वाज से मिस्किन ऑफ हर बेस्ट. एक परफॉर्मेंस वो दी इस फिल्म में जो आप सभी को देखना चाहिए. हु खुद से वाज आल्सो an actress and Tevens classic danceress. और सभी स्टाइल के डांस तो करती थी और ढेर फिल्मों में काम की, लेकिन सूरज में जो वो अपना कला दिखाई, तारीफ़ काबिल लेजेंडरीस. मिलके सुनते हैं कैसे समझाऊं बड़े ना समझो, क्या बात है. Beautiful song composed by Mahan Sangeetkar Jodi, the great Shankar Jai Kishan aur Rafi Sahab aur Asha Bhosle ji, saathiyon ke saath, of her best.

क्या बात है, जबरदस्त सॉन्ग है, क्लासिकल एकदम आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। एडी फिल्म सूरज 1966, पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी के आवाजों में कंपोज बाय जबरदस्त संगीतकार जोरी द ग्रेट लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स शंकर जय किशन। देखो मेरा दिल मचल गया, एक बार फिर उस जमाने का मशहूर गाने वाली शारदा जी शंकर जय किशन के साथ पर फ्रॉम द मूवी सूरज 1966।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। नतीजे या इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन एफएम चैनल पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स को भी एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिरिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स बदंग सोशो लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश से जरूरी खबरें, इश्तिहारे, कमर्शियल्स, इट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, और शायद आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो ऑर्गामन हो, ऑर्गा वुमन हो, इवेंट ऑर्गेनाइजर, और तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो जरूर उसके बारे में कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना करवाना यार। हो तो हो सकता है कुछ ना कुछ हो सकता है, चमत्कार भी हो सकता है। ये बात मैं श्रोताओं से इसलिए कह

उत्सुकता और उल्पता आप सभी को हॉलीडेज भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल तेनस कांतोर उर फा मांडाग तोट फ्रेडाग फा 9 uur morgens tot 5 uur middags। Kantoor 070-365-2247, studio 070-362-2077. Job hier radio kakam ho, denk aan Fahon Hindustani Radio. Bent u nog geen lid van Fahon Hindustani Radio? To guzaris binti ni beden kia ja raha hai, ki aap bhi hum logo ka member bane, auron ko bhi banaye, sabhi jankari. आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी 070-365-2247 पर आप तार करें। इसी तरह हम लोगों के बारे में रेकलाम बनाते रहना यारो, ढंढोड़ा पीते रहना, चर्चा करते रहना, इट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। एक ही दम बढ़ते हैं कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। आप सुनेंगे एक ऐसा बयान चुनकर रख चुका हूं, और ऐसा गायक है, महान संगीतकार है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सिंगर है, कंपोजर है, राइटर है, ऑलस इन एन मल्टी टैलेंटेड कलाकार हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, जिसपे हम लोगों को और सभी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का जो मेंबर्स है सभी पे नाज है। ये मल्टी टैलेंटेड कलाकार के ऊपर रिमेंबर द नेम यारो, विशाल मिश्रा रूबरू, ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम। कंपोज एंड अरेंज बाय द मैन हिमसेल्फ, और लिखा है महान लेखक द ग्रेट मनोज मुंतशिर। मिलके सुनते हैं रूबरू।

बयान सुनाया आप सभी को द ग्रेट विशाल मिश्रा, साथ दे रही थी असीस कौर, कंपोज एंड रिटन बाय द मैन हिमसेल्फ। अगला बयान एक ब्यूटीफुल सॉन्ग अरेंजमेंट कंपोज बाय मैस्ट्रो ए आर रहमान फ्रॉम द मूवी लकीर, और गाना का बोल है पैगाम। मिल के सुनते हैं महान गायक द ग्रेट शान और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाजों में।

जी हमारे प्रिय प्रिय साथियों, अति सुंदर बयान श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया म्यूजिक डायरेक्टर A.R. रहमान की साक्ष पर आप श्रोताओं ने सुना। महान गायक शान साथ दे रही थी कविता कृष्ण मूर्ति जी। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। मैंने चुन कर रखा है आप श्रोताओं के नाम पे आज का इस हसीन कार्यक्रम में। हाँ, मुझे प्यार हुआ है अल्लाह मियाँ क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सुनेंगे नदीम श्रवण की साक्ष पर। अलका याग्निक अभिजीत मिलके सुनाते हैं फ्रॉम द मूवी जुदाई।

हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ एड फिल्म जुदाई अलका याग्निक और अभिजीत के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज एंड अरेंज बाय नदीम श्रवण और लेखक था समीर। रंग इश्क का क्या बात है फ्रॉम द मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। महान संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर सिंगर द ग्रेट विशाल मिश्रा जी का बनाया हुआ ये ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम। रंग इश्क का क्या बात है।

ब्यूटी फुल सॉन्ग चढ़ा दे रंग इश्क का फ्रॉम द मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ म्यूजिक अरेंज अंत कंपोज बाय मैस्ट्रो विशाल शर्मा। प्रोग्राम आगे को बढ़ाते यारो कुछ आखिरी शेर्स हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में तो जरा गौर फरमाए। तकदीर को छोड़ो हमने तो तुमको ही खुदा माना था। तकदीर को छोड़ो यारो हमने तो तुमको ही खुदा माना था। तुम अगर चाहते तो मोहब्बत अधूरी नहीं रहती। ऐसी बेवफाई कि उसने मोहब्बत भी बदनाम हो गई। ऐसी बेवफाई की उसने कि मोहब्बत बदनाम हो गई। अपनी मोहब्बत की इतनी कीमत वसूल की उसने कि हमारी अर्थी भी लीलाम हो गई। आखिर जिंदगी ने भी आज पूछ लिया मुझसे कहाँ है वो शख्स जो तुझे मुझसे भी अजीज था। बारिश और मोहब्बत दोनों ही बहुत यादगार होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है बारिश में जिस्म भीग जाता है और मोहब्बत में आंखें। आखिरी शेर यारो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में हमने उसके बाद ना रखी किसी से मोहब्बत की आस। एक तजुर्बा बहुत था जो सब कुछ सिखा गया मुझे। तो ये था कुछ आखिरी शेर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और एक अति सुंदर बयान रख चुका हूँ प्लेयर में आम श्रोताओं के सेवा में। वल्लाह बीबी एक बार फिर फ्रॉम द मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अब आप दोनों विशालों का कमाल सुनिए। विशाल दादलानी और विशाल मिश्रा साथ दिया है दीपाक्षी कलिता मिलके अति सुंदर बयान को गाए हैं कंपोज बाय द ग्रेट मैस्ट्रो विशाल मिश्रा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग वल्ला है बीबी फ्रॉम द मूवी बड़े मियां छोटे मियां कंपोज बाय विशाल मिश्रा और विशाल दादलानी, विशाल मिश्रा दीपाक्षी कलिता के आवाज में, लिखा है इरशाद कमील। मस्त मलंग झूम यारो, एक बार फिर फ्रॉम द मूवी बड़े छोटे मियां, क्या बात है। इरशाद कमील के अल्फाजे, विशाल मिश्रा अरिजीत सिंह निकिता गांधी के आवाजे, कंपोज बाय विशाल मिश्रा।

Wonderful song, wonderful song from the movie Bade Mian Chote Mian. अगला बयान के तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, जरा दिल थाम के बैठिए। एक जबरदस्त सॉन्ग है जो मेरे ख्याल से जरूर आपके दिल को छू लेगा। महान गायक इस जमाने का, ग्रेट सिंगर कंपोजर मैस्ट्रो अरिजीत सिंह, मिलके सुनते हैं ये अति सुंदर बयान कंपोज बाय राम संपत।

जिनी रे तेरी याद सतावे रे, महान गायक इस जमाने का डिग्रेट अरिजीत सिंह जी। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है, दो महान गाने वालियां हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, द क्वीन ऑफ मेलोडी इस जमाने का और द रॉक एंड रोल क्वीन ऑफ मेलोडी इस जमाने का, फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, द ग्रेट सुनिधि चौहान एंड श्रेया घोषाल टुगेदर इन वन सॉन्ग छैला। म्यूजिक अरेंज बाय द ब्रदर्स सलीम सुलेमान, भूमि श्रद्धा पंडित के अल्फाजी।

0: श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया दो महान गाने वालियां हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान विद छैरा। तो हमारे साथियों आज का मेरे हिस्से के कार्यक्रम में का आखिरी बयान आप सुनेंगे और वो सुनन को जा रहे हैं आप सभी को फ्रॉम द मूवी भूमि 2024। इस जमाने का द किंग ऑफ मेलोडी द ग्रेट सोनू निगम जी का बिल्कुल नया सॉन्ग है, मिल के सुनते हैं मायावी।
1: चंद्राने झुमकी माड़ी कुंडित लोहाया पुता कन्नी गुण पुता कन्नी गुण नक्षत्र तंदु कोड़ा।

Ja, wat een beautiful song. Aapus Rotaun is na. Mahan Gayak is Zamanika, de king of melody. Maestro Sonu Nigamji ke beautiful awaaz mein ye beautiful song composed by Sanjeet Hatch. हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। ये आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, यह आशा उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मैं फिर आप सभी से मिलने वाला हूँ आवाज के जरिए। तब तक के लिए मुझे आप सभी इजाजत दे, जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। बाय बाय, लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड प्रोग्राम को फॉलो करते रहना। आने वाले दिनों में जरूर आप मुझसे मिलने वाले हैं आवाज़।

और जाते जाते हमेशा की तरह तो गुनगुना देता हूं ना, और देखा जाए आज कोशिश करता हूं कुछ संगीत के साथ, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। Natuurlijk te beluisteren via internet के लहरों द्वारा faunfm.nl पर ये कार्यक्रम आप लोग सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, नतुलक आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। ऑफ कोर्स है नतुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत है लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो दंत आतेत नार जली एंड वसर्ग हीर नतुलक एल्क दाग 24 आवर्स फॉर लाइक म्यूजिक इंफॉर्मेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, इश्तिहारे या तो आप अपने व्यापारी के बारे में कमर्शियल बनवा कर या जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो हो सकता है कि कुछ हो सकता है ना। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं कि फाइव सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी स्टार बैंस ऑफ द एस्ट प्लांट्स। तो जो भी रेडियो का काम हो, डेंक अनाउंस डेंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। सभी जानकारी बेल ऑफ मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 AM मॉर्निंग्स टू 5 AM मिडनाइट ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंट्रोल न्यू 070-362-2047 en studio 070-362-2077. Job hier radio kakam ho, denk aan Fahun Hindustani Radio. U bent van harte welkom. इसी तरह हम लोग के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार, चर्चा करते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हम लोगों का फुल टीम की तरफ से आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया। बेंटी नोख इन लेट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बेंटी निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने। और अगर हो सके तो कोशिश करना औरों को भी बनाएं, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। तो आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने, औरों को भी बनाए ना। हाँ, सभी जानकारी न्यूज़ करें। एक दाम लेकर चलते हैं हमारे दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का, मिस्टर इंडियन पॉप म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक। और लाते हैं आप सभी के सेवा में हमारे हॉलैंडिश का जबरदस्त गायक मैस्ट्रो शेखर कुमार, और वो सुनाते हैं आप सभी को मेरे सामने वाले।

ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को मास्टर शेखर कुमार और साथ दे रहा था रंजय राकेश अंत राहुल। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है अगला बयान चांद मेरा दिल और एक जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का मास्टर।

अति सुंदर बयान श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया और सुनाने वाला था मैस्त्रो बॉबी याकोब। अगला बयान एक और मशहूर गाने वाला आईडीआर 80-90, बहुत ही कम उम्र में हम लोगों को छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए मैस्त्रो सुभाष शिव प्रसाद का ये अति सुंदर बयान जो बहुत ही मशहूर हुआ था हमारे हॉलैंड देश और सूरीनाम देश में कि आजकल भी लोग गाते रहते हैं कि। लेकिन लिखने वाला और बनाने वाला

क्या बात है, मेरी ही आवाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। म्यूजिक रीअरेंज बाय मास्टरो जेम शेखर शिव प्रसाद विथ हिज स्ट्रिंगर्स ऑर्केस्ट्रा। एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे हॉलैंडिस को मैं लाता हूँ प्रोग्राम में। याद कीजिए आप 1980 सिलवा के माय मेवरो इंद्रा रामचरण मेरी पुसली चिरैया।

क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त कासे को सॉन्ग स्टाइल में आप सुना, और देखा जाए बहुत ही नौजवान कलाकार कुछ थे, द कॉलेज ग्रुप आईडीआर तख्त, और गाने वाली थी सिलवा के माय, मेर बकेन था सिलवा के माय ना जी लग मुफ्रो इंद्रा राम चरण जी। तो साथियों टाइम फॉर सम शेर शायरी है। अर्ज किया है यारो क्यों, किस किस को दोगे दुहाई अपनी दोस्ती और मोहब्बत की, किस किस को दोगे दुहाई तू अपनी दोस्ती और मोहब्बत की, यहाँ तुम्हारी सुनने वाले बहुत है पर समझने वाले कोई नहीं। The two most dangerous weapons in the world other than nuclear bombs are one, a girl's smile, two, a girl's tears. पुराने रबतों को फिर नए वादे की ख्वाहिश है यारो, पुराने रबतों को फिर नए वादे की ख्वाहिश है, जरा एक बार फिर कह दो मोहब्बत मर नहीं सकती, मोहब्बत मर नहीं सकती। याद आए जो तुम हमको अभी दिल में हुई हलचल तभी, याद आई जो तुम हमको अभी दिल में हुई हलचल तभी, लफ्जों को थाम लिया जुबान ने, लफ्जों को तो थाम लिया जुबान ने, हाय कहना है कुछ तुमसे लेकिन फिर भी कभी। दर्द की हर हद से अब गुजर गया हूं मैं, दर्द की हर हद से अब गुजर गया हूं मैं, फिर कभी ना सिमटूंगा यूं बिखर गया हूं मैं। कितना मुश्किल है जिंदगी का ये सफर, कितना मुश्किल है ये जिंदगी का ये सफर, खुदा ने मरना हराम किया, खुदा ने मरना हराम किया और लोगों ने जीना हराम किया। थे कुछ शेर्स आगे के कार्यक्रम में, कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने को। एक और जबरदस्त गायक जो बहुत ही कम उम्र में हम लोगों को छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए, मैस्त्रो शहीद वाहिद हुसैन, म्यूजिक रे अरेंज बाय छोटा भैया उनका, मैस्त्रो शारीफ वाहिद हुसैन, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले।

Beautiful song by maestro Shahid Waghid Hussein. अगला बयान एक मशहूर गाने वाले जो बहुत ही कम उम्र में हम लोगों को भी छोड़ के भगवान को प्यारे हो गई थी, the great great great अबीदा को राय शाह रामजान जी को लाते हैं प्रोग्राम में। उस जमाने का मशहूर गाने वाली नाइटिंगेल थी वो, और उसी के ब्यूटीफुल आवाज में, उन्हीं के याद में ये थी सुंदर बयान तुम्हें अपना बनाने की।

Beautiful song, Monsieur Ganevali from the 70s, 80s. Rest in peace, Abida Quraisha Ramjan. आज का इस सरनामी संगीत दूसरा भाग में जो आप सुन रहे हैं, आखिरी बयान आप सुनेंगे एक और महान गायक हमारे हॉलैंडीज का, दियार 70-80-90 मैस्ट्रो नदीम खान, अप्स एंड बेस्ट, जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन ही बीत गया, शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान, किशोरदा का गाया हुआ है सुपरहिट सॉन्ग नदीम खान जी के याद में और उन्हीं के आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे दिल की गली। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं उसका बोल ये है, तेरे बिना ये दिल।

अभी आप सुन रहे थे तेरी यादों में। चलिए ये सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, दियो तेरी यादों में।

अभी आप सुन रहे थे दिल तेरी यादों में, एक सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, तूने नजरें झुकाई तो क्या हुआ।

अभी आप सुन रहे थे मुझसे खफा। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिल तेरे साथ।

अभी आप सुन रहे थे एक बैठक गाना मैशो द टाइगर्स, यानी इस ग्रुप का नाम है द टाइगर्स। हरीश सुखदेव आपको सुनाने वाले हैं एक और मैशो। चलिए मिलकर सुनते हैं।

हरीश सुखदेव जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे एक मैशअप सुनने वालों। सोनिया सिंह आ रहे हैं प्रोग्राम में गिलबका ग्याल।

सोनिया सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे गिलबा का ख्याल। लीला एम आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों, और लीला एम जी आपको क्या सुनाने वाले हैं, अब चोलियाँ भीजे।

अभी आप सुन रहे थे अब चोलिया भीजे पसीने बनवारी, लीला एम आपको सुनाने वाले थे। मलेशा से बॉल आ रहे हैं प्रोग्राम में साइड चेक।

0: What's this smart?
1: Where's what?
0: What's this here, so? Explain, Mark. Let me hear.
1: I can tell you the truth. You sitting? I had emergency.
2: अभी आप सुन रहे थे मलेशा शिपाहू की आवाज में साइड चेक रसिका दीनदयाल आ रहे हैं प्रोग्राम में बोले बोले हिरनवा

बोले बोले हिरनवा हमको न मार, हमको न मारो जंगलवा में, रसिका दीनदयाल आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं। सुनने वालों, पृथ्वी आ रहे हैं प्रोग्राम में, श्याम सुंदर।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज़ में, केनेथ सालिक आपको सुनाने वाले हैं राधिका वायुली वेंगो।

अभी आप सुन रहे थे उमर जी की आवाज़ में मेरा साया साथ होगा। उमर और निसाम जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम में आ रहे हैं नदीम खान जी, और नदीम खान आपको सुनाने वाले हैं जिंदगी चार दिन की ना रूठो सनम।

जिंदगी चार दिन की, ना रूठो सनम, फिर मिले या ना मिले। अभी आप सुन रहे थे नदीम खान जी की आवाज़ में। सुनने वालों, एक नया गीत जो हाल ही में अंदर आया है और आपको सुनाने वाले हैं जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन। ये दोनों बाप बेटी है और इतनी मधुर भरी आवाज़ में इन दोनों ने ये गीत को गाए हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं। तुम मेरी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से आए।

मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए, अभी आप सुन रहे थे जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन जी आपको सुनाने वाले थे इस विनोद लक्ष्मण प्रोडक्शन अगेन। मैं नदिया की धारा, वादिका रामसुकु और स्टीफन बैताली आपको सुनाने वाले हैं।

स्टीफन बैताली और वादिका रामसुकुल आपको सुनाने वाले थे मैं नदिया की धारा बाहें तेरी किनारा। धीरज लाला राम जी प्रोग्राम में आ रहे हैं वादिका रामसुकुल के साथ में मेरे सनम तेरा खत मिला।

मेरी सनम तेरा खत मिला भी आप सुन रहे थे धीरज लालाराम और वादिका रामसुकुल जी की आवाज़ में। रायन मनोरथ आ रहे हैं प्रोग्राम में, मैं प्यार का दीवाना।

रायन मनोरथ जी से आप अभी सुन रहे थे। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे, तुमसे एक मैशो भी आप सुन रहे थे। सुनने वालों, देवेंद्र सिंह सिवनाथ और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं, दो साथी जीवन के।

अभी आप सुन रहे थे दो साथी जीवन के, दविंदर सिंह सिवनाथ के साथ में सविता सिंह आपको सुनाने वाले थे। इंद्रनील रॉय और प्रशांत रामचेतन आ रहे हैं प्रोग्राम में एक मैदली के साथ।

इंद्रनील रॉय और प्रशांत रामचंद्रन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये मैथिली सॉन्ग जब जब बाहर आए। अब तो है तुमसे, यानी एक मैथिली आप सुनेंगे काश बी की आवाज़ में।

काश भी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे ये मैथिली सॉन्ग। रायन मनोरथ और जॉयस शिव प्रसाद प्रोग्राम में आ रहे हैं आपके आ जाने से।

जय शिव प्रसाद और रायन मनोरथ की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। उमर वाहिद हुसैन आ रहे हैं प्रोग्राम में। घटा छा गई है

लता जी आपको सुनाएं अगर तुझको मोहब्बत है फिल्म आपकी परछाइयां में से है नई गिनती इन्फ्रेंसी शस्त्र का जी आनी की थी फिर शस्त्र का ये गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं एक फिल्म है फिल्म शायद आपने देखे होंगे बहुत पुरानी फिल्म है ये गीत है गाया गया है गीता राव जी के जरिए और मन्ना दे जी के जरिए ये फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है स्वार्थवेद फिल्म है शायद आपने देखे होंगे नाम है जग्गा डाकू जिसमें जयराज ने खेले हैं एक्ट्रेस का नाम मैं भूल गया लेकिन सिर्फ जयराज याद है। तो जब मैं बहुत छोटा था ये फिल्म देखे इसलिए सिर्फ जयराज याद है एक्ट्रेस नाम नहीं है क्योंकि जयराज तलवारबाजी में बहुत तेज था उन दिनों। तो लीजिए वही गीत मैं आपको सुना रहा हूँ इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, फिल्म जग्गा डाकू में से निकाल कर हम आपको सुनाएं गीता जी और मन्ना दे जी की आवाज़ में, जबकि आप सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर। ये गीत बहुत बार चला लेकिन ये गीत भी मुझे बहुत पसंद है। तो अगर जब मैं कहूँगा फिल्म अनपढ़ तो आपको पता चल गया होगा, लता जी भी आपको पता चल गया होगा। अगर पता चल ही गया है तो चलो सुनते हैं।

आपकी नजरों ने समझा मदन मोहन। जी हाँ, मदन मोहन के साथ पर फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर नेकेड ट्विंस 1962 का ये गीत लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं। चलिए अगला गीत हम रखने वाले हैं और ये है भी एक बार लता जी। फिल्म गुलामी तो आपने देखे होंगे। जी हाँ, फिल्म गुलामी में से निकाल कर ये चलता क्यों नहीं भाई? अच्छा, अगर वो नहीं चलता तो ये तो ज़रूर चलेगा।

वाह, क्या ड्यूएट था रफी साहब और आशा जी की आवाज में फिल्म कश्मीर के कलिमे से निकाल कर हमने पेश की ओपेन नैयर के साज पर। चलिए अगला गीत, तो क्या ख्याल है। जी हाँ, रफ़ी साहब ये कह रहा है कि अगर वो आता है तो सिर्फ वक्त बिताने के लिए, अमायकों की रतिंग। तो चलो सुनते हैं क्या ख्याल है रफ़ी साहब के और आशा जी की आवाज़ में फिल्म नीला आकाश में से निकाल कर 1965 का ये गीत, निगेटिव फैंसस का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा गीत है, सुन लीजिएगा।

अच्छा, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। हमने कहा ना, मैं कौन कीरा तेंग। बहरहाल, लेकिन ये भैया ये कह रहा है कि मैं प्यार करूं या ना करूं, ये भी अभी सोच रहा है।

सोचेंगे कि तुम्हें प्यार करूं कि नहीं। कुमार सानू ने आपको सुनाई है फिल्म दीवाना में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। थोड़ी बहुत मुझे याद ये है ऋषि कपूर और दिव्या भारती की फिल्म। दिव्या भारती एक बहुत जवा उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया, हेल यंग ओवरलीड। मुझे पता नहीं कितना देखना पड़ेगा, लेकिन सेज हेल यंग ओवरलीड दिव्या भारती। चलो हम आपको अब ये गीत सुनाते हैं इस तरह से। जी नहीं, गीत सुनाने से पहले, जी हाँ, गीत सुनाने से पहले फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये गीत सुना ही दूँ। चलिए ये गीत आपको सुना ही दूँ, और वो है इस तरह से।

फिल्म पूर्णिमा में से निकाले हैं, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं 1966 का ये फिल्म, निकिता सेन शस्त्र का ये फिल्म और हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो है ये भी लता जी, ओनली लता जी, लता जी की आवाज़ में ये धमाकेदार गीत हम आपको सुनाते हैं। आपने सुने हमने कहा धमाकेदार गीत, जी हाँ वास्तव में बहुत धमाकेदार गीत है। ये भी 1966 का है, फिल्म आए दिन बहार के, फिल्म आए दिन बहार के में से लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के सांच पर। और ये लता की आवाज़ में इसे ध्यान से सुनिए, गीत आपने बहुत बार सुने होंगे लेकिन आज स्पेशल सुन लीजिए, क्योंकि ये बात नहीं कि गंगा चला रहा है, जी नहीं, लेकिन ये गीत की धुन जो है और जिस तरह से लता जी ने ये गीत गाए हैं, वाह बहुत कमाल के।

दिन बहार के ये गीत हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर और लता जी की आवाज़ में टाइटल सॉन्ग आए दिन बहार के निकटिन सेशन सेस्तक का ये फिल्म। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। जी हाँ, लता जी के साथ 1961 का फिल्म छाया में से निकाल कर।

चोरी चोरी। और ये गीत हम आपको सुनाए हैं सलील चौधरी के साज पर, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज है। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर फिल्म साजन में से 1969 का ये गीत निकली, निकने से का ये गीत। हमने एक बार कहा था, पता नहीं कब, लेकिन एक बार फिर कह देते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जोड़ी है म्यूजिक डायरेक्टर जो सबसे ज़्यादा फिल्मों में साज दी है। 454 तक फिल्मों में इन्होंने साज दी है, सबसे ज़्यादा म्यूजिक डायरेक्टर जो फिल्मों में साज दी है। चलिए हम आपको सुनाते हैं फिल्म साजन में से ये गीत। लता जी के साथ।

मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ ये गीत हम आपको सुनाए हैं। फिल्म फर्श में से निकाल कर हमने पेश की लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। फाउन हिंदुस्तानी पर आप चून हैं, जो लोग चून किए हैं आपका स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम एक सुरेश वादिकर जी के गीत आपको सुनाते हैं। चलो सुरेश वादिकर की आवाज़ में ये गीत।

सुरेश वाडकर आपको सुनाए ये शानदार गीत निगाहें यार ने की एक ऐसा जादू भर दिया। और ये गीत हमने पेश की आज के कार्यक्रम में। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, जी हाँ, देखते हैं ये प्यारा गीत भी जहाँ तक मेरा ख्याल है फर्श से निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हम इसे चला रहे हैं, सुना रहे हैं।

शिकार करने का आए शिकार हो के चले, ये गीत हमने पेश की फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊं इस तरह से, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दोनों मिलकर आपको सुनाइए ये प्यारा गीत हमने पेश की। चलिए एक गीत हमने प्लेयर में रखे हैं और ये भी लता जी के फिल्म है आओ प्यार करें। जी हाँ, तो चलो सुनते हैं आओ प्यार करें में। और तो गाना तो है लेकिन कौन सा गाना मैं चलाने वाला हूँ लता जी की, ये सुनिए।

Zo, gaan ze patachelta, ze is toch wat van plan. लता जी की आवाज़ में ये शानदार गीत हम आपको सुनाएं। योजना तो बहुत बनाया मौसम के देखकर। बहरहाल फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने ये गीत पेश की, तो अगर ये गीत पेश की तो चलो हम आपको सुनाते हैं ये गीत उसके बाद।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर ये गीत पेश हुआ, लता जी की आवाज़ में, फिल्म आन मिलो सजना में से हमने निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। अगला गीत हमने प्लेयर में एक रखे हैं, इसकी थोड़ी बयाना बता देते हैं। ये गीत गाया गया है सी रामचंद्रा, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्हीं के साज पर, लता जी के साथ फिल्म अलबेला में। तो बात ऐसे है कि अब कौन रात्रि के 12 बजे रात्रि को यहाँ स्टूडियो आएगा और बैठकर आपको ये गीत सुनाएगा, मेरे बस के तो बात नहीं है। शायद कभी साल में एक बार हो जाए कि 12 बजे रात्रि को मैं यहाँ आऊँ, स्टूडियो में बैठूँ और आपको पहले बताऊँ कि ये गंगा ये गीत चलाने वाला है। ये नहीं करेंगे, चलिए ये गीत हम अभी आपको सुना देते हैं, क्योंकि 12 बजे रात्रि का कौन इंतज़ार करेगा। चलो हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, 12 बजे रात्रि को जलाना चलाना था, हम आपको अभी सुना देते हैं इस तरह से।

श्री रामचंद्र के साथ परचितल का रामचंद्र खुद और लता जी के साथ ये द्वैत हम आपको सुनाए हैं फिल्म अलबेला में से निकाल कर। अब ये तो ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 12 बजे रात्रि को कोई हमारे को लिखा या मैं आकर ये गीत आपको सुनाऊं तो लगे हाथ हमने अभी आपको सुना दी। यूँ समझिए कि 12 बजे रात्रि है, आपने आँख मूंद ली है, रात हो गया। बहरहाल फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो चुन घी हैं, इस मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

में प्रेम प्यार मोहब्बत के जगह मिले, वह क्या बात है। रफ़ी साहब की आवाज़ में और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। चलिए ये गीत हमने प्लेयर में और रखे हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है। नाग पंचमी में से नेगेटिव तुम से ही फिर

वाह क्या बात है, यह शानदार गीत पेश हुआ हमने चलाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं ये गीत। जी हाँ चलो ये गीत सुनते हैं, इस तरह से आ रहा है।

दिल की बातें दिल ही जाने, लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार मिलके दोनों आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और फिल्म तो बहुत प्यारा था, रूप तेरा मस्ताना, 1972 का नेहन तीन त्वेन सैफन तक का ये फिल्म हम आपको दिखाए नहीं, फिल्म के गीत आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, जी हाँ, गुलाम मोहम्मद के साज पर। जी चलो सुनते हैं रफ की आवाज़ में निखते एन एस एस तक का ये गीत, क्या ख्याल है।

दिल लुटा, उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। रफ़ी की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी राज।

जो तुम हंसोगी रोएगी दुनिया या हंसेगी दुनिया, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर शाह फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और देखते हैं निगति ए ने सैफ तक का ये गीत है, चलिए देखते हैं अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो कौन सा है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये गीत, हमने चून किए लेकिन सुना नहीं, चलो साथ मिलकर सुनते हैं, आप सुनोगे मैं भी साथ सुनता हूँ।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं तुम हमका ऐसा का देखत लैला। जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

हवा भी ज़्यादा ज़्यादा है। रफ़ी साहब और लता जी मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। और चलो देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म मन मंदिर। फिल्म मन मंदिर में से निकाले हैं निगद एन सीफन तक का ये गीत, 1971 का ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर। हमने एक दो बार कहा था लेकिन एक बार फिर कह देते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जी हाँ एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है जो बहुत सारे फिल्म में काम किए, सभी म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा, करीबन 455 या 54 होगा, 55 या 54 यानी 454 या 55, बहरहाल रौंद 45 फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दी है।

जादूगर मेरे सैया एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी निकित ए नसीबे तक का ये फिल्म है मन मंदिर में से निकाले हैं एलपी के साज पर यानी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलिए अगला गीत हमने प्लेयर में रखे हैं लेकिन ये गीत हमने सुना नहीं। यहाँ कुछ जिक्र हो रहा है चल सिनेमा देखें या दिखाएं, पर बहरहाल एवरग्रीन किशोर कुमार और देखते हैं आशा जी फिल्म वक्त में से निकाले हैं। चलो सुनते हैं ये सिनेमा दिखाने का सिलसिला या देखने का सिलसिला।

आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएंगे ये होटल जाने का सिलसिला और बाजार जाने का सिलसिला और सिनेमा दिखाने का सिलसिला हम आपको सुनाएं, बहुत सारे सिलसिलाएं हम आपको सुनाएं। और फिल्म का नाम हमने बताया था वक्त, जी हाँ वक्त, लेकिन पूरा नाम हमने नहीं बताया, फिल्म है वक्त का दीवार। आप सोचोगे गंगा वक्त में तो ऐसे गाने नहीं हैं, जी नहीं, फिल्म है वक्त की दीवार। तो वो तो फिल्म दिखाने के सिलसिला था, अब यहाँ डूबने मरने की बात हो रहा है, तो चलो सुनते एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी ये डूबने मरने के क्या सिलसिला है।

हाँ, तो आपने सुने चल दरिया में डूब जाएं के सिलसिला हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चुने मैं चला रहा हूँ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर प्रेम कहानी में से निकाल कर निकली फैफन सैफन दुख का ये गीत। चलिए आपको सुनाते ये सेमी क्लासिकल इस तरह से। साहब सुमन कल्याणपुर।

हाय रे सावन बीता जाए, ये शानदार गीत रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर आपको सुनाए ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, माइट मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, फिल्म पारस में से निकाले हैं मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको ये शानदार गीत सुनाए हैं। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, ये गीत मैथ मुकेश के बाद एक बार फिर मैथ मुकेश है इस तरह से। फिल्म चांद ग्रहण, फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल रहे हैं ये गीत।

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हर रोज की तरह हमसे तुमसे होगी प्यारे प्यारे बातें और कुछ प्यारे प्यारे गाने हम आप लोग के सुनाने वाला है। जहां तक ये आवाज पहुंचे, जहां तक लोग मुझे सुनते हैं, हमारा प्यार भरा पैगाम पहुंचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुंचे। आप सब जानते हैं हम सब चून है द एफर्गिन लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे। हम आप लोग के आज चले चलेंगे कुछ मूवी, एक मूवी है जिसे काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और देखा जाए हरियाली और रास्ता के हम कुछ गाने आप लोग के सुनाएंगे। आज मेरा प्रोग्राम ऐसे रहेंगे, हम हर गाने सुनाएंगे आप लोगों के, अच्छे अच्छे गाने जो हरियाली और रास्ता में गाया गया है। तो हम ले चलते हैं पहला गाना, लेके चलते हैं हरियाली और रास्ता के नेखंती तो इन शस्तक के, जिसमें मनोज कुमार मलजीना ने काम किया है, शंकर जय किशन का ये म्यूजिक है और हम सुनते हैं, हम आप लोग के सुनाते हैं, चलो मिलके सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता, मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो शस्त्र का, जिसपे मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज है, और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।

जी हाँ दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता, नेगेटिव ट्विन सिस्टर का फिल्म है मूवी। मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं और हरियाली और रास्ता का निकाला गाना है।

जा दोस्तों, एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जय दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी, फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे। एक था राजा एक था रानी, नेकदिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो हमने चलते हैं दोस्तों हरियाली रास्ता का नेकदिन टू इंसेस्ट का फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाए इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्ता 1962 का मूवी है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो एक गीत और है, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा। करोड़ों का दिल जीतने वाला, मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं हरियाली और रास्ता का, ये निकाला हुआ गाना है, नेकेस्ट का है जे। ये फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफ़ी अच्छी फिल्म है, मूवी।

0: से।
1: जी हाँ दोस्तों, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नहीं कंती द मिलियन ऑफ आर्स नाइट मुकेश की आवाज थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक थे, एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलके सुनते ही परवानों की रात, आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं करें तो इस शस्त्र का है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का। आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नेहीं ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं मूवी में, आप लोग के लिए चलते नहीं कंटिन वेफन शस्तक में। जोहर महमूद इन गोवा, अंखियों का नूर है तू, यू मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है दोस्तों। सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है। कल्याण जानन जी का ये म्यूजिक है। और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नई कंटीन फाइफ तक में, आंखियों का नूर है तू।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9753523 फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

तो यारो देखा जाए आपको हम नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग सुनाते हैं, और ये कौन सा गीत है, मूवी का नाम है, यानी कि एक मस्त भरी गीत है, अभी आप लोग को बताएंगे और आगे इस गीत के बारे में।

और तेरी मेरी बीच में कैसा है ये बंधन, तो ये अनजाना है कमल हसन रति अग्निहोत्री का ये मूवी एल्बम हैगा, नचिकेता लता जी का ये सॉन्ग है, एक और हो जाए।

और चेहरा तो क्या देखियो भैया, दिल में उतरियो तब उसका मजा आपको और मिलेगा। कयांगनी कुमार चानू।

और देखा है, क्या देखा है, क्या देखा है, साजन के प्यार देखा है, और कहां देखा है, आंखों में जाकर देखा है, और देखा है तो और आगे क्या देखेंगे। नैतिकेल लता जी पर माशी मोहम्मद रफी का एक और सॉन्ग हो जाए, तेरे नीले नीले आंखों की।

और दोस्तों जोंग जोंग जोंग मूवी का नाम है तुमसे अच्छा कौन है 1969 रंगत तेरी सूरज से इस अन रोमांटिक ड्यूएट सॉन्ग बाय द गोल्डन वॉइस ऑफ नाइटिंगेल लता मंगेशकर एंड पद्मा श्री मोहम्मद रफी वाइट हसन जयपुर जोंग द हिट से। उसके बाद हम चलते हैं मूवी का नाम है वक्त 1965 का एक सुपर हिट सॉन्ग है जो पद्मा श्री रफी जी का यानी कि रफी जी का सॉन्ग है और सुना जाए।

और ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझको मालूम नहीं है कि आप कितना हसीन है, और तुझे ये भी मालूम नहीं है कि अभी हम कितना जवान है। ये तो बातचीत हो रहा है और ये बात तो दो प्यार करने वालों के लिए है, और उसके बाद हम चलते हैं। आप यहाँ आए और जॉनी के पास किस लिए गीत सुनने को, आप यहां आए किस लिए। और दादा किशोर जी का ये सॉन्ग है, आशा भोसले का ये गाना है हिंदी मूवी सॉन्ग। तो दोस्तों, किशोर दादा आशा भोसले का सॉन्ग मूवी के नाम है कल आज और कल। 97.1 का ये प्यार भरी मस्त भरी सॉन्ग है, जिबर हिट सॉन्ग।

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: आप यहाँ आए इसलिए?
0: आज आपने बुलाया इसलिए?
1: आए हैं तो काम भी बताइए।
0: ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है।
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले

0: वादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं सुनो तो बुलाया इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए पहले जरा आप मुस्कुराइए पहले जरा आप मुस्कुराइए
2: और आपको मुस्कुराने की तो बात है दोस्तों। और ये गीत एक बेमिसाल गीत है किशोर दादा आशा जी का। और हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर। वो है वो क्या है आप खुद ही सुनिए। चेहरे पे खुशी छा जाती है। क्यों छा जाती है? जो किसी को प्यार आ जाते हैं।

और दीवाना हुआ पागल नॉक स्टेज द लवली सॉन्ग मेंशन। तो हम जानते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ जाते हैं, किसी के चुनरिया उड़ जाते हैं, तो चुनरिया पे भी गीत बन चुका है यारों।

और सर से वो सर की तो कभी धीरे धीरे के सांझ में हम चलते हैं गोविंदा और नीलम की ओर, और वो है खुद गर्ज मूवी के नाम है खुद गर्ज से पर हिट सॉन्ग मैं से मीना से नशा की डरी कैनेडी से वेल है।

और आप किया जाने से और क्या क्या हो जाते हैं हमारे यारो यारो, प्यार की कागज पे लिख दूं तेरा नाम।

0: only for the lovers.
1: प्यार का गीत बहुत अच्छा लगता है।
2: मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे?
1: आप भी बताइए कि मेरा मन तुम्हें क्यों चाहते हैं? अमीर कुमार, मनीषा कोइलारा, उदित नारायण और कल्याणी। मूवी का नाम है मन, मेरा मन, अमीर खान।

वे चाहे वो मन के बात है तो जरूर आपको हम बता देते हैं। और अगर जी ये लो कागज और कलम लिख लो जॉनी का नाम।

और ये लो कागज और ये लो कलम, उसके बाद तू लिख लो अपने दिल पे जॉनी का नाम। दीवाना हुआ बादल, मौफी का नाम है कश्मीर की कली, परमा श्री मोहम्मद रफी का ये गाना है जिसमें शर्मिला टैगोर शमी कपूर ने काम किया है।

करो क्या हुआ मन झुमा कश्मीर का कली पदमा श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है जिसमें शर्मिला टैगोर शामी कपूर ने काम किया है। अब आपको ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम लेकर चलते इतना है तुमसे प्यार मुझे मूवी के नाम है सूरज जिसमें राजेंद्र कुमार विजयन दीमाला ने काम किया है।

और मेरे राजदार इतना तू मुझसे तू जरूर प्यार करना, और अगर खुल्लम खुल्ला न कर सको तो छुप कर जरूर करना।

और सर से वो सर की, तो कभी धीरे धीरे के सांझ में हम चलते गोविंदा और नीलम की ओर, और वो है खुद गर्ज, मूवी का नाम है खुद गर्ज, सुपर हिट सॉन्ग, मैं से मीना से नशा की डरियल कैलेंडर से बैल है।

और आप की आजानी से और क्या क्या हो जाते हैं हमारे यारो यारो, प्यार की कागज पे लिख दूँ तेरा नाम।

लिखा। तो कुछ नए कुछ पुराने गीत, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा। कुमार शानू अलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

और तू धरती पे चाहे जहां भी रहोगे, चाहे श्रीनाम में रहोगे या जहां भी रहेगे, तेरे धड़कन से पहचानूंगा अलका याग्निक कुमार शानू का ये प्यार भरी लवली सॉन्ग थे। और तलाश का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

यार तुम बदल न जाना, मौसम की तरह मूवी के नाम था तलाश के बाद में हम जाते हैं। मूवी का नाम है राजा नीघंटीन 105 नीघत का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और चरा फिर से तुम जरूर कहना कि आपके जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करने की आदत से बन गया है। तो दिल तेरे दिल मेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना, उदित नारायण आलका याग्निक का ये जोन है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जे तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा, शरबानु राजेंद्र कुमार का ये सॉन्ग है, फिल्म है, और जिसमें मूवी का नाम है, यहाँ पर बताई गई है, इज ओल्ड इज गोल्ड, अमन जोंग का ये गीत है। पद्मश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत, आओ सुना जाए।

पर्सन हो राजेंद्र कुमार शेरबानु। अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ ही साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिसने यारा नई खत का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहाँ सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड के ऊपर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सायरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराही दार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।